वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

0: प्रार्थना अभवत्। इदानीम् अभ्यासं कुर्मः। अभ्यासस्य अन्ते प्रश्नः भवति, मा विस्मरन्तु। केचन जनाः प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रेषितवन्तः सन्ति। अद्य अहं तेषां नामानि अपि वदामि। कानिचन नामानि एव, बहूनि नामानि सन्ति। सर्वाणि वक्तुं समयः नास्ति खलु, अतः एकं वा द्वयं वा नाम वदामि यथा समयम्। अस्तु, अभ्यासं कुर्मः। अद्य वयं सम्भाषणं कुर्मः। आम न शब्द संभाषण में आएंगे। आम याने हाँ, न याने ना। प्रश्नवाचक शब्द है किम। किम याने क्या। प्रश्न होगा भवान वैद्य हो किम, क्या आप वैद्य है। उत्तर होगा आम याने हाँ, न याने ना। तो उत्तर आम होगा या न होगा। भवान वैद्य हो किम, आम अहम वैद्य हो, ऐसा भी उत्तर हो सकता है। भवान वैद्य हो किम, न अहम वैद्य हो न, अथवा न अहम वैद्य हो न अहम छात्र हो। अस्तु, पठामः। एषः प्रणवः, एषः युवकः, एषः विजय विठ्ठलः, एषः वृद्धः। प्रश्नः, प्रणव भवान युवकः किम।
1: आम।
0: विजय विठ्ठल महोदय, भवान युवकः किम।
2: न।
0: प्रणव, किम भवान वैद्यः।
1: न।
0: तर्हि भवान कः।
1: आम छात्रः।
0: उत्तम। महिला के लिए पूछेंगे भवती। भवती का, भवती युवती किम, आप युवती है क्या। देखेंगे, यूज करेंगे शब्दों का तो पता चलेगा। ज्योति बालिका अस्ति, स्मिता वृद्धा अस्ति। ज्योति भगिनी, भवती वृद्धा किम।
3: न अहम बालिका।
0: उत्तम। भवती शिक्षिका किम।
3: न अहम छात्रा।
0: तन्मय, भवान वृद्धः किम।
4: न अहम बालकः।
0: विजय विठ्ठल महोदयः, भवान वृद्धः किम।
2: आम अहम वृद्धः।
0: प्रणव, भवान शिक्षकः किम।
1: न अहम छात्रः।
0: भवान गणित छात्रः किम।
1: न अहम संगणक छात्रः।
0: ओ, संगणक छात्रः, कंप्यूटर स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस पठति किम।
1: आम।
0: उत्तम। मम मातृभाषा मराठी भाषा, भवत्याः मातृभाषा मराठी भाषा किम।
3: आम मम मातृभाषा मराठी भाषा।
0: तन्मय, भवतः मातृभाषा का।
4: मम मातृभाषा कन्नड भाषा।
0: ओ, भवतः मातृभाषा कन्नड भाषा किम।
4: आम मम मातृभाषा कन्नड भाषा।
0: भवतः मातृभाषा गुजराती भाषा किम।
4: न मम मातृभाषा कन्नड भाषा।
0: उत्तम। प्रणव, भवान संस्कृतम जानाति किम।
1: आम परन्तु स्वल्पम।
0: ओ, स्वल्पम जानाति। अस्तु। तन्मय, भवान गीतम इच्छति किम।
4: आम।
0: किम गीतम।
4: अत्र अत्र आगच्छ।
0: अस्तु, गायामः तर्हि। गायन्तु, शृण्वन्तु, गायन्तु च। अत्र अत्र आगच्छ,
5: अत्र अत्र आगच्छ,
0: तत्र तत्र नागच्छ,
5: तत्र तत्र नागच्छ।
0: पाठं पठतु अत्र,
5: पाठं पठतु अत्र,
0: क्रीडां क्रीडतु तत्र,
5: क्रीडां

0: भक्तिमय सकाळमध्ये वेळ झालेली आहे आध्यात्मिक विचार ऐकण्याची. केली वेणू धोनी 90.4 FM वरती तुम्ही ट्युनिन आहात.
1: आज्ञाकारिता का महत्व. संसार में संबंधों की बड़ी महत्ता है. पिता पुत्र, शिक्षक विद्यार्थी एवं गुरु शिष्य इत्यादि संबंध जीवन में सर्वोच्च प्राप्ति कराने वाले माने गए हैं और जिनके मजबूती का आधार है आज्ञा पालन. पुत्र पिता की, छात्र जब शिक्षक और शिष्य जब गुरु की आज्ञा पालन करते हैं तो उन्हें पिता से वारिसाना हक, शिक्षक की शिक्षा से उच्च पद और गुरु से मुक्ति व प्रगति का पथ मिलता है. पिता दशरथ की आज्ञा पालन कर राम ने जो समाज में आदर्श प्रस्तुत किया उसे कौन नहीं जानता भला. जीवन में दुआ व आशीर्वाद से महान पुण्य दिलाने वाला महान गुण है आज्ञाकारिता. आज्ञाकारिता अर्थात मात पिता, शिक्षक, गुरुजन एवं अपनों से बड़ों के बताए हुए कार्य को खुशी खुशी से करना. माँ बाप, वरिष्ठ जन या मालिक के आदेश का पूरा पूरा पालन करना. सदा हाजी का पाठ पक्का करना भी आज्ञाकारिता ही है. आज्ञाकारी व्यक्ति बड़ों की आज्ञा पालन में सदा तत्पर होता है. बताए गए कार्य को तत्परता से करने से बड़ों का विश्वास पात्र सहज बना जाता है और उनके दिल पर राज भी करता है. कार्यक्षेत्र में इस महान गुण के बदौलत में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति होती है. पद में बढ़ोतरी या पदोन्नति चाहिए तो इस महान गुण को अपनाना होगा. इस दिव्य गुण से व्यक्ति सभी का चहेता बन जाता है. उसे सभी से सहज दुआएं प्राप्त होती है. आज्ञाकारी को अनेक कार्य करने के अवसर भी अपने आप मिलने लगते हैं और विकास के द्वार तो सहज खुल जाते हैं. आज्ञाकारी बालक या पुत्र पुत्री पर माता पिता का निश्चल और निस्वार्थ प्यार बरसात की तरह बरसता रहता है. मात पिता आज्ञाकारी को ही अपने माल मिल्कियत व संपत्ति का वारिस भी बनाते हैं. आज्ञाकारी विद्यार्थी पर शिक्षक का विशेष ध्यान और उसे पढ़ाने की खास रुचि भी रहती है. बालक श्रवण कुमार ने माँ बाप की आज्ञा के खातिर प्राणों का बलिदान भी दिया और मिसाल पेश किया. अतः आज्ञाकारिता को अपनाइए और स्वयं को महान बनाइए. ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं.
0: संत कबीर म्हणतात, कल करे जो आज करे सो अब. या दोह्याचा अर्थ असा आहे की चांगले कार्य करण्यासाठी योग्य वेळेची वाट पाहू नका. आजचे काम आजच पूर्ण करा. सत्कर्म, सेवा आणि सद्विचार यांना विलंब करू नका. आपण केलेले प्रत्येक चांगले कार्य हे ईश्वराच्या चरणी अर्पण केलेले एक सुंदर पुष्प असते. त्यामुळे प्रत्येक दिवसाची सुरुवात कृतज्ञता, प्रामाणिकपणा आणि सेवाभावाने करूया. यासोबत ऐकवते पुढचं भक्तिगीत. ऐकत राहा वेणू धोनी 90.4 FM KLE गणसू भक्तिमय सकाळ.

0: वेणुधोनी 90.4 एफएम केएलई गनसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
5: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
6: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
8: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM के LE कनसु। केली कैंसर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव।
9: कैंसर कोणत्याही प्रकारचा असो अत्याधुनिक उपचार एकाच छताखाली भेटते।
0: प्रथमच उत्तर कर्नाटकामध्ये बेळगाव येथे तज्ञ आणि अनुभवी डॉक्टर अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी सहित सुसज्ज हॉस्पिटल केली कैंसर हॉस्पिटल।
9: केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC पाठीमागे नेहरू नगर बेळगाव येथे
0: तुमच्या आरोग्यासाठी नवीन आशेचा किरण केली कैंसर हॉस्पिटल।
9: मिळणाऱ्या सुविधा हायली स्किल्ड डॉक्टर्स टीम, केमोथेरपी, हेमटो ऑन्कोलॉजी, बोन मॅरो ट्रान्सप्लांट,
0: रोबोटिक सर्जरी, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी, ऍडव्हान्स रेडिओथेरपी आणि यासोबत सर्व प्रकारच्या कॅन्सर वरती उपचार।
9: आमचा पत्ता केलीज डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल आणि MRC पाठीमागे केली कॅन्सर हॉस्पिटल नेहरू नगर बेळगाव येथे।
0: फोन नंबर 08312552500 आणि 2473777।
9: मोबाईल नंबर 6360712326 किंवा टोल फ्री नंबर 1099।
0: आजच भेट द्या केली कॅन्सर हॉस्पिटल बेळगाव येथे।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

0: नमस्कार दोस्तों, आप ट्यून हैं वरुण धोनी 90.4 एफएम केएलई कनसू पे। मैं हूं आपके साथ मनीषा और आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को मैं आपसे मिलवाने वाली हूं, जिनका नाम है श्री अमरजीत सिंह, जो एक जीएसटी कमिश्नर अपील ऑफिसर है सेंट्रल जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज बेलगावी डिपार्टमेंट में। उनसे हम बात करेंगे और जान लेंगे कि उनकी क्या हॉबीज है और उनका जो जर्नी है उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम शो को शुरू करते हैं। आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 एफएम के एलई कनसू। सर, वेणु धोनी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: सर, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी बार ऐसे होता है कि बड़े जो ऑफिसर्स आते हैं उनकी पर्सनल लाइफ कैसे होती है, क्या उनके हॉबीज रहते हैं, वो सामान्य लोगों को जानने में बहुत ही इंटरेस्ट रहता है। तो थोड़ी सी पर्सनल बातें हम जान लेंगे कि आपका प्रॉपर गाँव कौन सा है, बचपना कैसे गया और एजुकेशन में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या किया, करियर कैसे स्टार्ट हुआ, ये सभी बातें हम हमारे लिसनर तक पहुंचाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे?
1: सामान्य लोगों की तरह हमारा भी लाइफ सामान्य रहता है, कोई उसमें ऐसी कोई स्पेशल बात नहीं रहती है।
0: ओके।
1: सो मैं मेरा जन्म यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था और मेरी पढ़ाई 12th क्लास तक उत्तर प्रदेश में ही हुई है, कानपुर में।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली से किया था और उसके बाद फिर मैं सर्विसेज में आ गया। तो मेरा 99 बैच है और मैं अब एक साल से अभी बेलगावी में, एक साल वहाँ मुझे आए हुए और उसके पहले मैंने लंबा समय अहमदाबाद गुजरात में गुजारा है।
0: ओके।
1: मैंने अपना करियर का शुरुआत लखनऊ से किया था।
0: अरे वाह, यानी कि काफी अच्छी अच्छी जगह पे आप रह चुके हैं।
1: हाँ, जगह तो सभी अच्छी होती है।
0: अच्छा। ओके। एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आज का जो यूथ जनरेशन है उनको बड़ी दिक्कतें आती है कि अपनी चॉइस का फील्ड उनको नहीं मिलता है, या फिर मिला तो भी उस पे हम करियर कैसे करें, ये सारे काफी क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में रहते हैं। तो एजुकेशनली आप यूथ को क्या बताना चाहेंगे?
1: सो आजकल के यूथ के पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, हमारे टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं थे। अभी तो इतने प्रोफेशनल चैनल्स खुल गए हैं जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होगा, जो आजकल के यूथ को पता होता है। इतने सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें हैं, गेमिंग में इतना है कि हमें तो हमारे जनरेशन के लोगों को शायद इतना पता भी नहीं है अभी जितने ऑप्शंस हैं। बाकी अगर बेसिक एजुकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेसिक एजुकेशन तो सभी को करनी चाहिए और जो भी अपना पैशन है वो फॉलो करें तो अच्छा है।
0: आज का जो यूथ जनरेशन है वो जल्दी डिप्रेशन में चला जाता है कि मतलब वो जो चाहते हैं वैसे अगर नहीं हुआ तो वो जल्दी डिप्रेशन में जाते हैं या फिर बुरी आदतें उनको लगती है। तो उस हिसाब से अगर सोचा जाए, आप अभी एक ऑफिसर है तो आपको भी बड़ी दिक्कतें आई होंगी यहाँ तक पहुँचने के लिए, काफी आपने स्ट्रगल किया होगा, उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी उतना ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो मैनेज करने का रहता है या फिर अपने आप को संभाल के रखना, अच्छा रखना, उसके हिसाब से आप आज के यूथ को क्या मैसेज देंगे?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी वर्थवाइल चीज अचीव करने के लिए मेहनत लगती है। दुनिया में बहुत कॉम्पिटिशन है, हर जगह रेस में बहुत सारे लोग हैं जो कि दौड़ रहे हैं, तो टॉप में आना, एक लाइन क्रॉस करना आसान काम नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और इसका प्रोसेस भी बहुत लंबा होता है और इस प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जिसमें कि आप डिप्रेशन फील करते हो या आप लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता है कि पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल मुझे यूथ में थोड़ा लगता है कि जल्दी से अचीव करना चाहते हैं सक्सेस,
0: क्योंकि इंस्टेंटली चाहिए सब,
1: बहुत हाँ इंस्टेंट सब चाहिए। तो देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो जो धैर्य के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ अपना लगे रहें तो सफलता जरूर मिलेगी, बट फोकस होके करना पड़ेगा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं आजकल,
0: करेक्ट,
1: बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, पहले शायद इतने नहीं थे और बहुत चमक चौंध है, तो उससे थोड़ा दूर रह के अब पूरा फोकस के साथ अगर अपनी मेहनत करे तो लक्ष्य मिलता है।
0: आपने अपनी जो पढ़ाई जगह जगह पे कंप्लीट की तो उसके बारे में कुछ खास एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
1: सो मेरा बैकग्राउंड, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैं IIT दिल्ली से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है।
0: अच्छा।
1: और बीटेक किया है और एमटेक भी IIT दिल्ली से ही किया है। फिर क्योंकि अभी मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ तो मेरा ऐसे डायरेक्टली वो नॉलेज डायरेक्टली यूज नहीं होता जो टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली काफी उसका एनालिसिस में काफी यूज होता है। तो एजुकेशन कोई भी हो कभी कोई वेस्ट नहीं जाती है, हमेशा आपको मदद करेगी एजुकेशन।
0: अच्छा, तो आप यहाँ पे आने से पहले अहमदाबाद में थे
1: जी,
0: तो बेलगाम आने के बाद में अभी आपको कैसे लग रहा है? ऑलमोस्ट अभी 1 ईयर कंप्लीट हो गया।
1: हाँ, मुझे बेलगाम आए हुए 1 साल हो गया, अगस्त में ही मैं आया था। तो जब ट्रांसफर ऑर्डर आया था तब बेलगाम के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। मैं अहमदाबाद में 13 साल से था।
0: अच्छा,
1: तो इट वाज काइंड ऑफ अ शॉक कि हम बेलगाम छोटी जगह है या कैसा है, बिल्कुल नहीं आइडिया था। और गुजरात में या हमारी तरफ जो भी हमारे जो सर्कल है उनमें भी किसी को बेलगाम के बारे में पता नहीं था। बट ये था, ये सुना था कि यहाँ कॉलेजेस होते हैं, पहले बच्चे लोग पढ़ने आते थे बेलगाम में, मेडिकल कॉलेजेस होते थे, बस उतना ही पता था। बट जब यहाँ आए तो फिर ये तो मतलब इतनी सुंदर, इतनी अच्छी जगह है कि लोगों को इसको इसके बारे में पता ही नहीं है। नॉर्थ में लोगों को ये तो एकदम स्वर्ग जैसी जगह है, मुझे तो बहुत पसंद है।
0: अच्छा,
1: बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा, एकदम पीसफुल छोटी सी जगह है और लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, अमेजिंग जगह है, मुझे बहुत पसंद है।
0: थैंक यू सो मच बेलगाम के लोगों की तरफ से, यानी कि ओवरऑल आपको ये जगह बहुत ही पसंद है।
1: बहुत बहुत पसंद है।
0: तो आप एक जीएसटी कमिश्नर हैं
1: जी,
0: तो आपके काम के दरमियान भी ऐसे काफी कुछ आपको एक्सपीरियंस आए होंगे, और जीएसटी के बारे में काफी कुछ लोगों में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है कि क्यों आया है, अननेसेसरी पैसे हमारे बहुत जाते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको लेके कुछ बोलना चाहेंगे?
1: सो पहले अंडरस्टैंडिंग को हम कह सकते हैं कि पहले लोगों में बहुत एप्रीहेंशन थे, लेकिन मुझे नहीं लगता आज की डेट में, तो जीएसटी ने बहुत सारे हमारे जो ट्रेड एंड इंडस्ट्री है उसको प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया है। अब पहले हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्स होता था, बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स होते थे, तो वो सब अभी हट गए हैं और अभी वन नेशन वन टैक्स वाली फिलोसफी, वन नेशन वन टैक्स ही एप्लीकेबल है। तो चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, सब जगह क्लैरिटी है कि क्या टैक्स लगेगा। बाकी टैक्सेशन इटसेल्फ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता ही है, इतनी सिंपल नहीं होता है, बट फिर भी हमारे प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइन हुए हैं, और स्पेशली अब तो सारा ऑनलाइन है सिस्टम, सारा सिस्टम ड्रिवन है, तो डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन भी लोगों का इतना डायरेक्ट नहीं है, सब पोर्टल में हर एक चीज आपको अपलोड करनी है, हर एक चीज ऑटो मोड पे आती है, तो पब्लिक को काफी फैसिलिटी अभी अवेलेबल है। और बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम्स भी होते हैं, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, सब पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट भी रहे तो कोई भी जीएसटी ऑफिस में आके कोई भी क्लेरिफिकेशन पूछे तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। हमने हेल्प सेंटर भी हमारे खोले हुए हैं, ऑफिसर्स की स्पेशली वहाँ पे ड्यूटी लगती है कि अगर किसी भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो वो अपना पूछ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्लेरिफिकेशन ले सकते हैं।
0: जैसे आप आउटरीच प्रोग्राम अरेंज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम अरेंज करते हैं, तो कभी ऐसे आपको एक्सपीरियंस हुआ क्या कि अरे अभी तक लोग यही सोच रहे हैं कि इतने पीछे का सोच रहे, ऐसे कभी हुआ?
1: देखिए, ऐसा है कि टैक्सेशन बहुत कॉमन इंसानों, कॉमन जनता में, बिकॉज ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो टैक्स से वैसे भी बहुत, इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हु एक्चुअली आर नॉलेजेबल अबाउट टैक्स एंड टैक्सेशन सिस्टम। आम आदमी को इतना टैक्स के बारे में पता नहीं होता है।
0: करेक्ट।
1: तो अभी, लेकिन अभी हमारी अवेयरनेस और ये सोशल मीडिया और आउटरीच प्रोग्राम की वजह से काफी बढ़ गई है, तो अभी वैसी बात नहीं है। बट हाँ, हमें शॉक नहीं होता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा 140 करोड़ का देश है और हर तरीके के लोग हैं। तो 5 साल हो गए जीएसटी को, 2017 में लॉन्च हुआ था, अभी 5-6 साल हो गए। सो अभी काफी तो पेनिट्रेट हो गया है जीएसटी का, लोगों को पता है, बट स्टिल हम आउटरीच प्रोग्राम्स और अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं।
0: जब कॉलेज में वगैरह ऐसे प्रोग्राम्स आपके होते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहता है? मतलब वो जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो अवेयर रहते हैं थोड़ा बहुत?
1: आजकल के स्टूडेंट्स बहुत अवेयर हैं, क्योंकि सबके पास, सबके हाथ में मोबाइल है और सबको मालूम है, और वो बहुत सटीक और बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत अवेयर यूथ है आजकल का।
0: ओके, यानी कि अच्छा एक्सपीरियंस है फिर आपका।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: India's first multi-speciality Ayurvedic hospital now in Shahpur, Belgavi. An NABH-recognized Ayurvedic hospital with the facilities of Suvarna Bindu Prashna, Srushti Santana Utpatti Kendra, Priyambu, Skin and Hair Care, Ayur Cardiology, Abhaya, Cancer Care, Eye Care, ENT, Oral Care, Panchkarma, Diet and Lifestyle Modification, Weight Management and Beauty Enhancement Treatments. For your entire healthy lifestyle, visit the Ayur World, KLE Hospital and Research. रिसर्च सेंटर शाहपुर बेलगावी फोन 08312486286
3: KLE का आपके साथ आपके साथ।
4: हेलो एंड नमस्कार सभी सुनने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप मुझे सुन रहे हैं KLE वेणुध्वनि 90.4 FM पर। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगली बार जब आप खाना बना रहे हो और या खा रहे हो तो मुस्कुराहट के साथ में खाना बनाइए और खाइए, देखिए जीवन कितना खुश होगा ये आपको भी अंदाजा नहीं है। चलिए अभी मुस्कुराइए।

0: सर थोड़ा सा पर्सनल हम बात करते हैं कि आपके हॉबीज क्या है और आप अभी एक कमिश्नर के रुतबे पे काम करते हैं, तो वो अगर नहीं रहता तो आपका प्रोफेशन आप क्या चूज करते, सेकंड ऑप्शन?
1: आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मेरा प्रोफेशनली तो मैं अब गवर्नमेंट जॉब में हूँ और टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ, बट मेरा जो हॉबी है, मेरे जो दिल के एकदम करीब है, वो म्यूजिक है।
0: अरे वाह।
1: तो शायद मुझे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो किसी म्यूजिक के फील्ड में कुछ ना कुछ कर रहा होता।
0: अच्छा, तो कभी वैसे फील होता है कि अरे मैं कहाँ आ गया, मुझे क्या करना था?
1: कभी कभी देखिए हर एक तरीके की फीलिंग आती है, कभी कभी लगता है, हर एक को थोड़ा सा लगता है, कभी लो हाई फीलिंग आती है, बट ठीक है, अच्छा है, ये भी अच्छा है।
0: तो क्या अभी भी आप म्यूजिक सीखते हैं या फिर पहले कभी सीखा है?
1: जी, मैंने अभी तक तो म्यूजिक नहीं सीखा था, लेकिन बेलगाम में आके मैंने थोड़ा म्यूजिक सीखना शुरू किया है, बेसिक, क्योंकि म्यूजिक सीखना बहुत जरूरी है। अभी तक तो शौकिया गाते थे, लेकिन अभी जब सीखना शुरू किया तो पता लगता है कि अच्छा, उसमें फिर और नेक्स्ट लेवल पे आप जब समझ के कोई चीज को करते हैं तो आपको और आनंद आता है। तो मैंने अभी सीखना शुरू किया है और मुझे बहुत मजा आ रहा है।
0: अरे वाह, यानी कि इतनी आपके दिल के करीब वाली बात अभी आपने सीखना स्टार्ट किया?
1: मुझे मौका अभी मिला, मैं बहुत दिनों से इस ताक में था कि कुछ मुझे मौका मिले जिसमें सीख सकूं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले।
0: अच्छा।
1: तो बस जब ऊपर वाले की इच्छा होती है तभी वही होता है, तो मैं तो यही मानता हूँ।
0: ओके, तो आपने जैसे बताया कि आपकी पढ़ाई जो है यूपी में स्टार्टिंग की कंप्लीट हो गई, तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी क्या इच्छा थी कि आप क्या बने ऐसे कुछ?
1: मेरे पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड से, मेरे फादर बिजनेस में थे, तो उनको, उन्होंने मुझे किसी भी फील्ड में जाने के लिए ऐसा बोला नहीं कि तुमको यही करना है। उन्होंने कहा तुमको जो अच्छा लगता है वो करो। उन्होंने मुझे शुरू से ही इंडिपेंडेंस और पूरा फ्रीडम दिया, तो उसकी वजह से ही फिर जो मुझे अच्छा लगा, जैसे जैसे गाइडेंस मिलती गई वैसे वैसे मैं आगे लाइफ में बढ़ता गया।
0: अरे वाह। तो आजकल के जो बच्चे हैं, काफी कुछ बातें उनके लिए भी आपने बोली है, बट पढ़ाई हो या फिर आपके हॉबीज हो, ये जो एक साथ संभालना है और उसके साथ साथ पेरेंट्स का चाहते हैं उनको भी संभालना है
1: जी।
0: क्योंकि हमेशा ये दोनों की तो बनती ही नहीं है ये एज में, तो ऐसे यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है और करियर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और माँ बाप का कंसर्न कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इंडिपेंडेंट रहें और लाइफ में कुछ अच्छा करें, उनके भी एस्पिरेशंस अपनी जगह बिल्कुल जस्टिफाइड हैं। तो आजकल के यूथ को मैं यही कहूँगा कि एक बैलेंस बनाएं, माँ बाप को भी डिसअपॉइंट करना ठीक नहीं है, और एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें लाइफ में, और पेशेंस रखें और हार्डवर्क। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मैं इस चीज को पहले भी कह चुका हूँ कि कोई शॉर्टकट नहीं है।
0: करेक्ट,
1: मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से ही फल मिलता है।
0: करेक्ट,
1: ओवरनाइट कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है।
0: एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात कही और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि इंस्टेंटली अगर हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, इमिडिएटली जो चाहिए ऐसे हमें लगता है या फिर बदलाव आए हमारी जिंदगी में, वो ज्यादा देर तक रहता नहीं हमारे साथ
1: जी।
0: ये बात तो सबको पता होगी, बट कभी कभी मानना मुश्किल हो जाता है। तो सर अभी म्यूजिक इतना आपको पसंद है
1: जी,
0: तो एक आपका फेवरेट सॉन्ग हम हमारे शो में सुनते हैं मतलब आप एक चार लाइनें सुनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा।
1: दो लाइन सुना देता हूँ मैं।

0: तो सर इसके साथ साथ अभी नेक्स्ट आपके प्लानिंग कुछ है क्या, मतलब आपके हॉबी को लेके?
1: प्लानिंग हॉबी को लेके यही है कि मुझे जो भी मौका मिलेगा मैं उसको ग्रैब करूंगा, अपॉर्चुनिटी को, और जितना मैं सीख सकता हूँ। समुंदर की तरह है संगीत, इसका कोई अंत नहीं है, सीखना कभी भी बंद नहीं होगा। तो जहाँ जो मौका मिलेगा मैं वहाँ पे सीखने की कोशिश करूंगा।
0: इतना पसंद है आपको?
1: बहुत पसंद है।
0: अच्छा, तो अभी आपके फैमिली में आपके साथ कौन कौन है?
1: मेरी फैमिली में मेरे दो बेटे हैं, और बट मैं यहाँ पे अकेला हूँ। मेरा छोटे बेटे अभी 12th क्लास में है, बड़ा बेटा कॉलेज में है। तो उसका, क्योंकि वो 12th में है तो अभी अहमदाबाद में ही है मेरी वाइफ के साथ। हाँ, तो यहाँ पे मैं अभी अकेला ही हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं।
0: अच्छा, अरे यानी कि अभी आपके पास मेरे ख्याल से म्यूजिक सीखने के लिए काफी टाइम रहेगा।
1: जी, बहुत टाइम रहता है।
0: तो इसके साथ साथ अभी बेलगाम आपको इतना पसंद आया है, तो आसपास के कुछ लोकेशन पे आप गए?
1: मैं आसपास लोकेशन में गोवा जाके आया हूँ, दो बारी गोवा जाके आया हूँ, और हम्पी देख के आया हूँ।
0: अरे वाह,
1: वहाँ पे दो दिन रुका, मुझे बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटल में। और मैं बाकी, और मुझे प्लान है जाने का।
0: तो क्लाइमेट वाइज अगर देखे तो मतलब वहाँ का आपका जो अहमदाबाद में क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत ही डिफरेंस है। खाने के कुछ डिफरेंसेस आए होंगे, तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी दिक्कतें आई आपको?
1: नहीं, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। ऑफ कोर्स क्लाइमेट अहमदाबाद का एकदम अलग है, वहाँ पे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और यहाँ का क्लाइमेट काफी मॉडरेट है और काफी प्लेजेंट रहता है, तो अच्छी बात है। और खाने का भी यहाँ पे हर एक चीज अवेलेबल है, तो ऐसा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया।
0: एज अ ऑफिसर सर एक सवाल पूछना चाहूंगी कि मतलब आप लोगों को अपना माइंडसेट ऐसे प्रिपेयर ही करना रहता है कि हाँ बाबा मेरा ट्रांसफर कभी भी कहीं पे भी हो सकता है, तो उसके लिए मुझे रेडी रहना है।
1: जी, वो तो अगर जो प्रोफेशन जो आपने चूज किया उसके सारे एस्पेक्ट्स आपको पहले से प्रिपेयर आपके माइंड में रहते ही हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
0: और उसके साथ साथ आपकी फैमिली को भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा।
1: उनको भी रहना पड़ता है। जी बिल्कुल
0: करेक्ट। ऐसी कौन सी जगह है क्या कि वहां से छोड़ के आते वक्त आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत ही मतलब नहीं जाना था छोड़ के उसको, ऐसे कुछ?
1: देखिए, जहाँ पे भी आप थोड़े टाइम रहते हो तो उस जगह से आप सेट हो जाते हो, फिर आपको उससे एक लगाव हो ही जाता है। लेकिन क्योंकि हमें पता ही है कि कोई परमानेंट हमारा कोई ठिकाना है नहीं, तो हम उस लेवल का लगाव नहीं रखते हैं। अच्छा। और थोड़ा सा संभाव रख करके लाइफ जीते हैं।
0: जाते जाते हम शो में हमारे एक आपकी पसंद का गाना मैं प्ले करूंगी, वो हम हमारे शो में सुनेंगे, तो वो कौन सा रहेगा?
1: जी, मेरे तो पसंद के बहुत सारे गाने हैं, तो मोहम्मद रफी जी का गाना सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे।

0: और जाते जाते हमारे जो लिसनर्स है जो आपको सुन रहे हैं अभी काफी सारे, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए मैसेज तो यही है कि आप जो भी जिस भी लाइन में जिस भी प्रोफेशन में हैं उसमें पूरे फोकस के साथ रहें, और पेशेंस और मेहनत दो चीजें लाइफ में बहुत जरूरी हैं। मैं फिर इसी बात को कहूँगा कि अभी लगे रहें तो वो आजकल एक एड मैंने सुनी है कि एक दिन में काम नहीं करेगा लेकिन एक दिन जरूर काम करेगा, तो एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी,
0: बस मेहनत करना ना छोड़े।
1: जी
0: थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे साथ बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम जो आप के लिए वेणुधुनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। हमारे साथ थे श्री अमरजीत सिंह जो जीएसटी कमिश्नर अपील ऑफिसर है सेंट्रल जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट बेलगावी में। कैसा था आज का शो हमें जरूर बताइए, नंबर है 9019904904। मनीषा फिर हाजिर होगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसो। नमस्कार।

हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट। आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे पहला रेडियो स्टेशन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु। तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे प्राइम शो बी रिलैक्स पर। शुरू करने से पहले आपको कुछ महसूस हो रहा है? जी हाँ, बादलों वाला मौसम, तेज हवा और हल्की हल्की बारिश। यस, आप सही सोच रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मानसून के इस खूबसूरत सीजन की। आज हम बात करेंगे इसी मानसून के बारे में, साथ ही आपको सुनाऊंगा कई जबरदस्त और हिट गाने। बने रहिए हमारे साथ वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनसु में।

नमस्कार एंड वेलकम बैक टू क्वेनु ध्वनि 90.4 KLE का नसु। हमारा शो बी रिलैक्स चल रहा है और हम बात कर रहे हैं मॉनसून के बारे में। आगे बात करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि बारिश का मौसम किसी और मौसम से बहुत ही अलग होता है और सभी के लिए बारिश का यह सुहाना मौसम अलग अलग फीलिंग्स लेकर आता है। सभी लोगों को, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, सबको इस का बेसब्री से इंतजार रहता है और यह मौसम सभी के लिए एक राहत की सांस लेकर आता है। इसी के बारे में आगे बात करेंगे इन गानों के बाद। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE का नसू।

पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, नेचर बहुत ही सुंदर है और इसके कई सारे रूप और दृश्य हैं। बारिश उनमें से एक सबसे बड़ा और सुहावना मौसम है जो इंसान के दुखों परेशानियों को खुशी में तब्दील कर देता है। रेनी सीजन नेचर का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है। देखिए, बारिश है क्या? बारिश धरती पर वापस आने वाले बादलों से पानी का गिरना है जो सूर्य की मदद से इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू बादलों में स्टोर हो जाता है। और मैं आपको बताऊंगा इसी झिलमिल मौसम के बारे में इन गानों के बाद। बने रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE का सुपर।

बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप सुन रहे हैं वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासु। आप सभी एज ग्रुप के लोग, चाहे वो बच्चे हो या बड़े, बारिश का पूरा मजा लेते हैं। बच्चे शायद सबसे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, मन खुश रहता है और ये मौसम सबको बाहर निकलने और घूमने पर मजबूर कर देता है। इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए बरसात का मौसम एक अलग खुशी लेकर आता है। कोई स्कूलों की हॉलीडेज भी होते हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स जो है कई एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। और अब हम आपके लिए लाए हैं कुछ जबरदस्त गाने। सुनते रहिए और बने रहिए हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर।

0: हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
2: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

वेलकम बैक टू अवर शो बी रिलैक्स। एक आम आदमी के नजरिए से देखा जाए तो बारिश का मौसम गर्मी से भी राहत देता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये भी देखते हैं, बरसात के दिन किसानों के लिए भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये फसलों के उत्पादन में भी काफी मदद करते हैं, जिससे फसल काफी अच्छी होती है। बारिश के इस मौसम के बाद नेचर में भी एक नई सी जान होती है, ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती खुशी से नाच रही हो। करेंगे बात इसी सीजन के बारे में इन गानों के बाद। सुनते रहिए वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू।

देखिए, जिस भी दिन बारिश होने वाली होती है, पहले से ही नेचर हमें हल्के हल्के इशारे देने लगता है। दिन में भी हर चीज रात सी नजर आने लगती है, हवाएं चलती है, आसमान में बादल छा जाते हैं। कई लोग इस मौसम में फोटोग्राफी, लॉन्ग ड्राइव्स, पिकनिक्स जैसे कई एंटरटेनमेंट वाली चीजें करते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट भी बारिश में साइकिल चलाने पर भी खूब होता है। विल डिस्कस मोर ऑन द टॉपिक एंड अबाउट द हैप्पी एंड रोमांटिक मानसून आफ्टर दिस अमेजिंग सॉन्ग्स। बने रही है हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE का ना सुपर।

Hello guys, thank you for being there with us and you have tuned into Venu Dhoni 9.4 KLE Kanasu. आज हम बात कर रहे हैं इस प्यार भरे बरसात के मौसम की. देखिए बारिश का खुशनुमा मौसम हो और हम चटपटे नाश्ते और चाय की चुस्कियों की बात ना करें तो बात बिल्कुल भी नहीं बनेगी. ये मौसम उन लोगों के लिए भी है जो खाने के बहुत ही शौकीन हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं #foodie. चलिए ऐसा करते हैं, मैं आपको एक इमेजिनरी दुनिया में लेकर जाता हूँ. सोचिए बारिश का मौसम है और आप आपके घर की बालकनी में बैठकर चाय की चुस्किया और उसका लुफ्त उठा रहे हैं और किचन से गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू आपके नाक तक पहुंच रही है. ऐसे में भला किसकी जीभ ना ललचाए, क्यों आया ना मजा. तो चलिए चाय की चुस्किया और पकौड़ों के साथ सुनते रहिए हमारा चैनल वेनु धोनी 90.4 KLE कनसु.

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू में। आयुष आपके साथ बना हुआ हूँ। दोस्तों देखिए, बारिश का मौसम जो है अपने ही आप में एक वैकेशन की तरह होता है। सभी लोगों के लिए बारिश का मौसम अलग अलग तरह की फीलिंग्स लेकर आता है। कई लोग मौसम बहुत पसंद होता है तो कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें बारिश का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पसंद ना होने के कई भी रीजन हो सकती है, जैसे रोड पर या आपके घर के आसपास कीचड़ का जमा हो जाना या फिर मच्छर हो जाना, और कई सारे रीजन हो सकते हैं। कई लोग घर पर ही रहकर मूवीज या फिर OTT प्लेटफॉर्म सीरीज देखकर बारिश के साथ साथ उसका आनंद लेते हैं। देखिए, बारिश होती है तो बिजलियां भी काफी कड़कती है, जिसे बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं। ऐसे में आपको आपके घर में ही रहना चाहिए जिसे हम सुरक्षित रहे। चलिए करेंगे बात इन सावधानियों के बारे में इन गानों के बाद। सुनते रहिए वेनु धोनी 90.4 KLE कनसू।

नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे शो बी रिलैक्स में। और हम बात कर रहे हैं बारिश के इस सुहाने मौसम की। अंत में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स टू बी सेफ इन रेनी सीजन। जैसे कि आपने हमारे पहले एपिसोड्स में सुना होगा कि बारिश का मौसम खूबसूरत तो है, पर इसमें कई सारी सावधानियां बरतना भी जरूरी है। चलिए मैं आपको थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ, क्योंकि यू नो सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। तो पहला पॉइंट ये कि घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, गड्ढों को मिट्टी से भर दे। गाड़ी या कोई भी व्हीकल या वाहन मिनिमम से मिनिमम स्पीड पर चलाए, क्योंकि देखिए सड़कें गीली होने के कारण कोई भी दुर्घटना हो सकती है, आपका वाहन फिसल सकता है और बड़ी दुर्घटना होने की आशंका हो सकती है। अपने आसपास रुकी हुई नालियों को साफ रखें, जिससे आपके घर में मच्छर नहीं होंगे। बारिश होती है तो बिजली भी कड़कती है, ऐसे में खुले मैदान या किसी इलेक्ट्रिक पोल या किसी पेड़ के आसपास या नीचे ना खड़े हो सके तो पानी को उबाल कर पीजिए। चलिए मैं आयुष आपका रेडियो दोस्त अब आपसे विदा लेता हूँ, जल्द ही मिलेंगे आप सभी के चहेते शो भी रिलैक्स में। सुनते रहिए वीनू धोनी 90.4 KLE कनसु। बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।

है। और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

रंगभूमि 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में ये खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

पूरी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही, इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों के बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

थे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरुथोनी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

वेणुधुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेनू थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

यूनिथोनी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

सुनते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग। और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चले सुनते प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।